0: और बिस्मिल दा संदेश है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो जिसमें फिरंगियों ने पैसा जानता है उसे हम काकुरी में लूटेंगे, काकुरी कबाब खाते खाते लूटेंगे, हाँ, और पैसों से हम खरीदेंगे बम। क्या खरीदेंगे? बम।
1: तू नहीं हटता, उन्हें दूध देना बंद कर दे।
2: सपने

0: स्मिता संदेश, लखनऊ जाने वाली ट्रेन, जिसमें छोटू सुन तेनू बिस्मिता संदेश मिल गया
1: है?
0: नहीं तो सर, 8 दिन बाद जो ट्रेन लखनऊ जा रही है उसे हम काकोरी में लुटेंगे। बड़े पैसे जा रहे हैं अंग्रेजों के, लुटेगा
1: नहीं।
0: यार उसे हम हथियार खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे?
1: हथियार।
0: हाँ शाबाश।

0: बिस्मिल का संदेश है। लखनऊ जाने वाली ट्रेन है, इसमें फिरंगियों का पैसा जाता है, उसे हम 7 दिन बाद काकोरी में लूटेंगे और उन्हीं पैसों से आएंगे हमारे हथियार।
1: बस फिरंग दे।